0: काफी बेटर था।
1: Go ahead.
0: 3848 Lions Road, Riviera Palms, South Texas.
1: Tower. Confort 10-8.